तस्मिं समयेन थो मुखलानं जगत्सपं खिलाने तुखिते तित्स्वा पोचंके सतते सयी।